0: तो के ने शाशी के हेले हेरे आपुलो हुते तालों कांदा ने अकी यार कुंती शी यां कालो तातो वेगला
1: सब डालना गोमुं सुनिए सिनोगी ल
2: 那我吃这药是哪节目特你在哪学过比较个学艺的项目以内可能在公务员送些忙我吃这学艺了老师点讲过那我觉得点点对了先就到外面去了他见了老师点讲过那老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪个老公是哪
1: 怪了。
3: 嗯，亚东拉丹呢？阿布鲁兹。
1: 哦，那他俩真像。咱们小时呢，经常吃这药，我哪预备了？
3: 也
1: 啊，啥子？这里现在没出不进去，但是我那学问大了。
3: 来，来，来。